ti poradi tanu, vidite sakale sami sad. Kaušik, suno, vanda je bal, kurti da kala vasa niđa kula gala, tuma hata kahu jo čaha ubara, kahita tapa vala rošu hamara. Sura samara kada ni kada hi, kahi na janava hi aap, nitya maan rana paaya ni, kaya na kada hi pralaap. Suni katu vachan kuthara suhara, ha ha बालक पर छोहु सूद दूद मुख करी न कोहु जो लरी का कछु अनिचित करही गुरु पितु मा तुमो तो मन भरही बंधु का है सब सम्मत तोरे तू छल विनय करसी करु जोरे करि परि दोष बोर संग राम राम नाहित छार कहा उबराम राम मात्र लगु नाम हमारा परशु सहित बर नाम तुम्हार कहु सुभाहु न कुल ही प्रसंसी कालहु डरहि न रण रघुवंशी विप्र वंश के असि प्रभुताई अभय होई जो तुमहि डराई सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के उखरे पटल परस